बिखै समाहे दोहरा, जब आए स प्रभ को भयो, जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैल सुनाए, कब बाज दोहरा। ठाड़ पहयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न आए। पंथ चलै तब जगत मैं, जाप दू गरु सहाय दोहरा। ये जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फाल, पावेंगे भगवंत दोहरा।

पंजवा अंतर गुरे आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवनी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रतिया दरगह पाइया ठाओ कहु नानक कृपा करे जेसनो एह वाथ दे जाग मह उत्तम काढ़िया है विरले के ई के महला पंजवा

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कावन कावन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन ना सका।

सेविय एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटिया तो डिठे।

जिस कृपा कर हिरदय वसै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आप जी वडभागे हो रह रहा सहज पाठ सुन के लाहा प्राप्त कीता है। संध्या समय दीवान दी रंभता आरती आरता कीर्तन सुन के लाहे प्राप्त करिए। हाजरी भर रहे हैं भाई गुरसेवक सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाले। इन्हों तो उपरंत पौने छे तो साढ़े छे बजे तक

अमृत प्रवाह छुटकंत साज दुआर जेस ज्ञान गोर बेमल सार संत सेख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर धरहु।

शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह तीस गुर भजन सुन कन रे हुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर।

परगास भया जास जानकै एक पढ़ सुनह गावह प्रभाते करह स्नान स्नान करह प्रभात शुद्ध मान गौर पूजा वेद।

जग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहे आपूर बहु विद वर्णन सतगुर गुर सेव अलाख गात जाकी श्री रामदास तारण तरणं जिन्हों बात।

0: गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत समारन कौ
1: समारन कौ भारा करके समारन कौ
0: पुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ पुन त्रम तुजा फहरंत

0: श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इना दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तां जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तां समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आउंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझिया है उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलता है कि जिथों असी शुरू हुई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलफे, त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है जिन्हें गौ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है व्याकुल होंदा है पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना भावनावां दा कमजोर होना श्रद्धा दा छीण होना प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता भावना दी अधिकता श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी भावना घटी प्रेम घटिया रस घट जांदा है और बिल्कुल प्रेम नहीं बिल्कुल श्रद्धा नहीं बिल्कुल भावना नहीं तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल कथा नाल कीर्तन नाल भावना जोड़ी है श्रद्धा जोड़ी है प्रेम जोड़ी है तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है। श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है शुकराने विच रहिंदा है जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां दे जीवदा हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने हिरदे दे तल ते नहीं ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है विचारां दे तल ते जीवदा है श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है वरतों करदा है और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है इस तरीके नाल ओ प्रेम भी धुंधला ते मैला हुंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है जद श्रद्धा छीन आउंदी है जद किधरे भावना नूं सट लगदी है जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते नहीं उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने वस्तु नु समझदे ने विचार नाल जुड़दे ने भावना नाल परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे ओ प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावे आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां वी उतनी सूझ नहीं रखेगा जितनी के भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा क्योंकि भगत ते जुड़े है भगत ने ते रस माणे है भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न तरसे लोहा कंचन रिंड होए कैसे जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने जीवदे ने हिरदे दे तल ते भावना दे तल ते और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने जो ज्ञान फुटदा है वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ा दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने ज्ञान कितना महान है उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है। आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दी। ठाकुर दी सेवा करी घर विच मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है। पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है। बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी क्योंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं नाम आ ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच गागर पित्तल दी सिर ते रखी है नदी दे तट ते गए ने गागर खूब मांझी है इशनान कीता है गागर नू भरिया है ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई मछलियां ते पै गई कुछ मेंढक सन उना ते पै गई कुछ कछुए सन उना ते पै गए। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देच प्रभु दा एक नाम बीठल भी है उसे दाई आप प्रयोग कर देने बीठल नाम दा एक मंदिर भी है बीठल मंदिर पंडरपुर देच और ओ तीरथ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बीठल दस मैं की करा मैं पानी भरया है गागर मांझी है तेनू इशनान कराना है पर करा की पानी पवित्र नहीं है क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने जन्म उना दा पानी विच जीवन उना दा पानी विच मरण उना दा पानी विच सारी क्रिया पानी विच और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी विच है। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबिक 84 लख जोनिया ने जेदे चो 42 लख जल दे च ने 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नब जंतु ने आकाश देच उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी देच है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी देच है जन्म पानी देच है मरण पानी देच है ए पानी पवित्र नहीं हो सकता ए ते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तैनू इशनान नहीं कराना खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा। पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र विच छोटे ने बच्चे ने पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जिही टोकरी लैके आप बगिया विच गए फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਓ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਨੀਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਗ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਇੰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਤਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੌਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਗਊ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਈ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕੇ ਬੁੱਧ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾਹ ਹਰ ਕੁਜਾ ਜਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਇਮ ਸਰਸ਼ਾਰਸਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੁਜਾ ਜਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਿਚ, ਔਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਰਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਹ ਵਿਚ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਣ ਵਿਚ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਾਂਝੇ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗ ਪੇਖਣੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖੀ ਅਲੋ ਖੋਜ ਨਿਰਖੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਜ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ। ਆਸਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, तो गुरु का मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदिया ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखते हैं कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जाती है, एक रेखा बन जाती है, एक मार्ग बन जाता है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनू खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा की खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदिया ही राम का मार्ग बनेगा और राम की लीनता नसीब होगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दे चलीन। श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल दे चलीन करदे रहे, राम दे चलीन करदे रहे। और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम दे चलीन कीता, बिठल दे चलीन कीता। और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे चलीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮ ਭੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੂੰਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਖੜ ਇੱਕ ਨਾ ਅਵੜੋ ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਦੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ तो पति दे दुख देच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसी उलझन देच फसदा है और उस तो किसी समस्या का समाधान नहीं आता या उसके दिमाग देचों गीत दिया लहरा नहीं निकल दिया तो जेड़िया उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है ये वो कभी ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नु सौ गए। आज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नो लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। किन्हें पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोच दे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। आज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमक दाया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव का ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दीतियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती। तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कहन लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति। पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलाप दे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखते हैं पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया हैं मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हां संपूर्ण हो गया है तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखियां ने मैं खुद वेखियां ने। भज्जे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखियां गईयां ने अखर पढ़ प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए आश्चर्यता ते रहस दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया। अरदास कीती हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा कि मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? तां कहिंदे ने अलहाम होया, आकाश बाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जय देव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं हां। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जांदा है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जांदा है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जय देव अशकबार हो, बार बार सजदे छोए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, आज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समोह दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण कीता होया है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरतलीन करिए, तो उस राम दी आप तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमंग सत्यादे भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है, परमाद पुरुख वो फिर पूरे होया है। पुरुख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरुख है। परमाद पुरुख मनोपिमंग मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नू नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनू सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा, उनू जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनू अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों? कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उत्थों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर की क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा, वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन दी सोच तो परे, मन दी विचार तो परे, इस वास्ते आप कहंदे मनोपिमंग मनोउपमा तो रहत है। परमाद पुरुख मनोपिमन सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रतया है। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देच राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिमन सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा है, हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है, जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वो बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस विच जीवदा है, एक कवि रहस विच जीवदा है, एक संत रहस विच जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदे मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनू पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने, जितने विद्यालय ने, ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया है, विस्माद नु खत्म जरूर किया है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखने नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही विस्माद तो होता है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होता है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहते ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे हैं, रस्ते विच एक गंदगी का ढेर पिया है, सवेर का वक्त है, सूरज दिया किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दिया किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदिया नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारिया दे तू है पर फिर भी सारिया तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने ने परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करण दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां। हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जांदी है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्यादि भाव रतन परमद भूतन परकृत परम जग चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा दा नाम है, उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगा चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि नदनोद जस सिमरणे ना जन्म जराद मरण भयं। नहीं आउंदा जिदे सिमरण करन दे नाल जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते वृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनु मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर पे सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर पे कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नु, पूर्ण वृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहन जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख, मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने, हरी दा जो जन है ओदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदा। इत्थे इक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास विच कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति विच कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदे चेहरे उत्ते ताजगी बनी रहिंदी है, उसके चेहरे उत्ते आनंद बनिया रहिंदा है। उन्हों वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया है, ये वृद्ध हो गया है, ये कमजोर हो गया है, नहीं, उसका हुलास, उसकी उमंग, उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे देच फरमान करते हैं, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनू इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जसवस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर, ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है, इसनु तू कर्म। इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने, अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म ओ है जद हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है, तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जद शुभ दा चिंतन कीता जांदा है तो हिरदा शुभ हो जांदा है, ते जैसे हिरदा शुभ होंदा है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जांदा है। वो हर एक दी शुभ कामना करता है, वो हर एक दा शुभ चिंतक बनदा है, पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है, कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं। भवभूत भाव समव्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मेदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकाल दर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे आया है व्यापक है भवभूत भाव समव्यं जो हुण भी है पहले भी सी अगावी जो है होवेगा जो हर समय मौजूद है त्रैकाल दर्शी है भवभूत भाव समव्यं परमन प्रसन्न मिलन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है जो अत्यंत परम आनंद विचलीन है तू उस दा ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है यही शुभ चिंतन है। अगा चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है ओदे सामने जग तुच्छ है जोग साधना भी तुच्छ है और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है। जोग जग नए फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन जय देव आयो तस्सु फटन भवभूत सर्व गतन। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर और इस तरह जाप कर दिया ही तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन दे च ही संसार दे सुख ने परमार्थ दे सुख ने गोविंद दे सिमरन दे च ही लोक सवर जांदा है पर लोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.

पिता गुरु जी दे सामने आउंदे सन ते चेहरा नहीं सन चुकदे। मैं विस्तार च नहीं, सिर्फ जो नुक्ते ने ते मन मत वाले शब्द नहीं है। जदों आउणा संगत विच हजूर पिता दे चरणा विच मत्था टेकना ते पिछे बैठ जाना, बैराग विच प्रेम विच बिरहा विच। ते जे सिखां ने पुछ लिया, मात नानकी जी ने भी पुछया, साईं जी पुत्र मेरा किसे नाल बोलदा भी नहीं, क्योंकि भाई ये बड़ा जिहड़ा साका है ना, ये कमाई तो बिना नहीं हो सकता। दिल्ली विच पता नहीं किन्ने कु लोग औरंगजेब रोज मारदा सी, पर जिदन पहुंची कोई आत्मा वल हाथ पाया उदू बाद औरंगजेब दिल्ली विच एक रात भी टिक नहीं सकिया। साईं जी ना मेरा पुत्र बोलदा ना किसे नाल गलबात करदा, चुप ते शांत रहिंदा। ते सतगुरु ने उत्थे शब्द कहा सी, नानकी तेरा पुत्र अजर नू जरन विच तुरंतर है, अजर नू जरन वाला है। ते जदों कोल आए गुरु तेग बहादुर जी ने नेत्र नीवे कीते ते बांह पकड़ के अपने कोल बिठा लिया, कहन लगे लाल जी बेटा जी तुसी नेत्र क्यों नहीं चुकते, जदों दरबार विच आउंदे हो बाहर भी देखीदा नीवी पा के रखीए। हालां पिता ते पुत्र दा रिश्ता है, ते अखां विचों आंसू भर के कहन लगे पिता जी जिसनू अंदर दे औगण पता होण उहदे सामने नेत्र नहीं चुके जांदे हुंदे। हुण गुरमुखो उह जप के अंदर दी अवस्था जिसनू पता होवे, गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने ना ला के कहा नानकी देख तेरा पुत्र अजर नू जरदा पिया है। ते किस करके मैं कहना कि इहदे घर विच जिस पुत्र ने जन्म लेना उस जैसा ना कोई सी ते ना कोई होवेगा। माता नानकी अत दे प्रसन्न हुए। साहब गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने तिलक ते जन्यू की खातर यह सारे असीं कहने हैं, इहदे विच कोई शक नहीं। तीन शब्द इतिहास ने कहे ने कि धर्म की चादर, खिंद की चादर ते सृष्टि की चादर। प्रगट पै गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै धापी चादर, कर्म धर्म की जिन पत राखी अटल करी कलयुग में साखी। वो धर्म की चादर ने जिवें गुरमुख दस रहे सन, पर तिलक ते जन्यू नू खतरा सी। ते अज मैं कहना चाहना कि जिस निशान नू गुरु नानक साहब ने स्वीकारिया नहीं, उन्होंने कह दिता चौकड़ मुल अनाया बै चौंकै पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण तिया, ओ मुवा ओ झड़ पया वे तगा गया। तग कपाओ वटिए तग कपाओ कतिया ब्राह्मण वटै आए, कहो बकरा को बकरा रिणकाया सबको आखे पाए। होए पुराना सिटिया पीपर पाइया होर, हसूर ने परवानिया नहीं। पर नौवें गुरुदेव दे कोल आए ते इस स्थान ते जिथे असी बैठे हाँ इते ह्यूमन राइट्स, मैं कल भी बेनती की इंसानी हकां दे लोक टंडोरा बड़ा देंदे ने, किसे ते मुसीबत हो जाए लोग मारे जान ते टीम जांदी है देखण वास्ते कि इंसानी हकां दी खातर असीं देखण आए हां कि लोग किवें कतल कीते गए। मेरे गुरु ने कहा कि मरण तो बाद गिणतियां मिणतियां नहीं, इंसानी हक तां इह वे कि किसे ते मौत आवे उहनूं घर तोड़ के आप उहदी मौत नूं स्वीकार कर लै। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तिलक ते जन्यू दी खातर उन्होंने शहादत का जाम पीता, पर अफसोस जिस चिन्ह नूं गुरु पांदा नहीं, अकीदा नहीं, उहदी खातर कायम रह जाए, इहनूं हक है अपने चिन्हां दा। पर अज उहनां लोकां नूं गुरु तेग बहादुर दे बच्चियां दे चिन्ह बिल्कुल पांदी ना, उहनां नूं कृपाण चंगी लगदी है ना, खुले दाड़े वाले सिख चंगे लगदे ने। किस भुलेखे च लोक जी रहे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां दे शहादत वाले दिन आप सब इकत्र होए हो। सिर्फ इको बेनती है, सतगुरु ने बाणी विच बहुत कहा कि सुख मैं बहुत संगी पए, दुख मैं संग ना कोए। जाए कह दिता सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस के रह, विपत परी सब ही संग।

तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया, परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी हजूर दे शहादत दिवस नाल संबंधित गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है और सत्कार योग सिंह साहब जी ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हजूर दे अमृत बचन नू आधार बना के आप जी नाल विचारां दी सांझ पाई है। आओ धन गुरु ग्रंथ साहब जितने को सोझी समत बख्शदे ने बख्शे कोई समय विच रह के गुरमत विचारां दी सांझ पा सकीए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी का अमृत शब्द जो गायन किया जा रहा सी, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहे कीने। नाल असी बचन ए भी सरवण कीते, ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो, न उपजियो कछ ज्ञाना। गुरु तेग बहादुर जी नू पूछ लिये के अस हरि नू उस परमात्मा नू भजना किवें कह, किवें सिमरना कह। ते जो आरंभक तुका ने शब्द दे रहाओ दे बचन ने के मन रे कौन कुमत तैलीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहे कीने। एक पराया तन ते एक पराई निंदिया। ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विच अक्सर जिथे पर दारा दी गल आई है उथे पर निंदिया दी भी गल कीती गई। एदा मतलब जितना गुनाह पराए तन दे नेड़े जाने इना बिना सोचे समझे किसे दी निंदिया करनी भी उतना गुनाह है। दोनों नू बराबर रखिया। हुण उस खरी परमात्मा नू किवें जपिए, गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी विच असी देखने। हजूर दे 59 शब्द ने, 57 श्लोक ने। 57 श्लोकां विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने खरी नू भजन दी, खरी नू जपण दी, खरी दा चिंतन करन लई वार वार श्लोकां विच कहा। पर दो उदाहरणां उन्होंने साडे दृष्टमान संसार दियां दित्तियां जो असी रोजमर्रा जीवन विच तकने वी आ, ते अपनी जिंदगी विच कई वारी ओ उदाहरणां असी नेड़े खो के देखियां। क्योंकि खरी नू भजन तो बिना, सिमरन तो बिना, नाम तो बिना किवें अस्थिर मत आवेगी। हजूर कृपालू जी ने पहला श्लोक कहा कि ना खर भजियो ना गुरजन सेवियो संबंधी बेनती के उस खरी नू फिर भजिए किवें, किवें जपिए।
ते सतगुरु ने पहला प्रमाण दिता सी के गुण गोबिंद गायो नकी जन्म अकारत कीन कौ नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। देखो पहले ते खरी भजन दी गल कही, पहला प्रमाण ही हजूर ने दिता के कौ नानक हर भज मना के ओ मेरे मना तू खरी नू जप तेरा जन्म अकारत जा रहा है ते जपना किवें है, किदे तो पुछ के किस ढंग नाल जपना है। ते गुरु तेग बहादुर जी ने ते शब्द वरते है बिद, जिस तरीके नाल ते एक बचन असी गौर पढ़ने, सिर्फ दो श्लोक ही मैं आप नाल व्याख्या सांझी करनी है। एक ता एसी कौ नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन, ते दूसरा बचन सी के स्वामी को ग्रियो जो सदा स्वान तजत नित, नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। दोनों ली शब्द बिद वरते है, मच्छी ले भी शब्द बिद। ते याद रखो अगली उदाहरण दिती के जिमें मालक दे घर विच कुत्ता है, मालक दे घर दा वफादार है, जिमें कुत्ता मालक दे दर ते बैठा है, उस बिद उस तरीके नाल तू परिपूर्ण परमात्मा नू जप। पहला बचन के मच्छी दी उदाहरण दिती, ते गुरमुखो जिन्नी देर तक अपने आत्मक जीवन दी कणी नकी, याद रखो शब्दां दा जाल कदी किसे दी जिंदगी विच सुख नहीं लिया सकदा। रुख जितना मर्जी उच्चा होवे, रुख दे पत्ते भी अत दे सुंदर होण, बनावटी रुख असी देखने आ चुरस्ते विच लगे, हुण तां उहनां विच बिजली दे लैंप भी जगन लग पए ने। याद रखो जिस रुख दियां जड़ां ही किते नहीं, उस रुख दी ना कदी छां ते ना कदी फल है, ते जिस अंदर गुरु ली भावना ना दी जड़ ही कोई नहीं, उहदे जीवन विच ना कदी छां ते ना कदी ठंड है। सतगुरु जी ने अमृत बाणी विच पढ़िया लिखिया दे संबंध विच एक बचन कहा सी, कहन लगे खरना बाजा तै सिकदारा इन्ना पढ़िया नाओ। ये भी पढ़ाकू ने पढ़े ने, ज्ञान बहुत है। हरन नू शिकारी ने पढ़ाया, बाज नू भी शिकारी ने पढ़ाया, ते सिकदार नू भी पढ़ाया गया। कहन लगे पर अफसोस के तिन्ने वक्त नाल जदो लोड़ पई अर्थां दी राजनीति करदे रहे, ते तन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने कदी तक के खरन ने पढ़ाया गया, ओह शिकारी दे कहन ते तुरिया। उन्हें अपने वर्गे खरन जंगल विचों इकट्ठे करके लियांदे ते शिकारी दे सामने खड़े कर दिते, ते उन शिकारी दी मर्जी है जिवें मर्जी उन्हूं को के मारे, वो सिर्फ लोकां नूं पिछे लाण लई तुरिया। पर जदों मरन दी गल चली आप अपने घुरने च वर गया, मारे कुछ होर गए। शब्दां वल ध्यान दिओ, हरण शिकार कट्ठे करके लिआउंदा है, उहदे पिछे कतारां बन के आउंदियां ने, पर अफसोस के जदों हरण दे पिछे भरोसा करन वालियां कतारां, हरन आप किसे होर टिकाने ते चला गया, ते विचारे जेड़े पिछे भरोसा करके आए सन उन्हां दे घरां दे दीवे गुल हो गए। पढ़े ता ओ भी ने, बाज वल तुसी देखदे हो, बाज भी ता एक पढ़ाया होया शिकारी दा, उहनूं अपने घर रखदा है, उहनूं डोर नाल बन्नया है, अपने कोलो खुराक भी उन्हूं पांदा है। वो इस करके बाज नूं बन्नी बैठा है कि जदों लोड़ पए कोई पंछी उड़दा दिसे ते मैं दी डोर खोला, क्योंकि एदी झपट विच पकड़ बड़ी ज्यादा है, एदी झपट विच आया होया पंछी कोई बच नहीं सकेगा। बाज भी तां पढ़िया है, गुरु जी ने बाणी च बचन कीता, कहन लगे खरन भी पढ़िया, बाज भी पढ़िया, सिकदार भी पढ़िया, हरना बाजा तै सिकदारा एना पढ़िया ना। कोई बाज रखी बैठा है, कोई खरन रखी बैठा है, ते खिमा करियो कई बारी कुछ बंदे अपनी पकड़ नू मजबूत करन वास्ते गल्लां वालियां नू रखी बैठे। हरना बाजा तै सिकदारा एना पढ़िया ना, फांदी लगी जात फहायन अगै ना ही थाओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाणा ना, पहलों दे जड़ अंदर जमै ता उपर होवे छां। जे अंदर जड़ होवेगी ते बाहर छां है, जे अंदर जड़ ही नहीं ते आपां छां दी आस कित्थों करांगे। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा जप
ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਰ ਦਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ ਕਿਵੇਂ ਭਜੀਏ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਨੇਵੇ ਇਹ ਖੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਚੂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤੀ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਛੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਮੱਛੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸਰੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਆਰੇ ਦੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਓਨੀ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਾਂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮੱਛਲੀ ਨੀਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮੱਛਲੀ ਨੀਰ ਜਿਉਂ ਅਦ ਘਾਓ ਤਿਉਂ ਸੁੱਖ ਘਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਮੱਛੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੀ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਚਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਕੋਈ ਭੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਭੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੇਵੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਬਾ ਵੀ ਲੈ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤੋ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਰਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਮ ਤਗਤ ਨੇ ਨਿਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
गुरमत मां है, जिस दिन साडा जन्म हुंदा है सानू पंज प्यारे कहिंदे ने कि आ बाणियां पढ़ के तेनू अमृत दी दात दित्ती गई, इस बाणियां नाल तेरा गुरु घर विच जन्म होया है, ते जिस बाणी करके साडा गुरु घर जन्म होवे जे उस बाणी नू मनन तो इनकार कर दिए, जिस मां ने जन्म दिता ओदी कुख तो मुकर गए। हजूर ने कहा कि इस तरह बह कि जिवें एक कुत्ता अपने मालक दे दर ते बैठा है। सतगुरु ने तो अपने लिए शब्द भी वरते सन, असी बाणी विच पढ़ने हैं कबीर साहब दे बचन के खम कूकर तेरे दरबार भौंकै आगै बदन पसाह, ते इथो तक अपना नाम भी उन्हें रख लिया। कह लगे कबीर कूकर राम को मुदिया मेरो नाओ, गले खमारे जेवरी जै खिंचै तै जाओ। मेरे गल विच तेरे हुक्म दी संगली कह, तेरे इशारे ते तेरे पिछे तुरांगा, किसे खोर दे इशारे ते नहीं। फिर सतगुरु दी बाणी विचों ही अपने आप नूं कूकर दी तरह समर्पित कर दिता। हजूर ने कहा जिवें कुत्ता मालक दे दर ते बैठदा है कि जिवें एक मच्छी पानी नूं प्यार कर दीए, गुरु तेग बहादुर जी कहिंदे ने इस तरह भलिया कि तू उस परम पिता परमात्मा दे नाम नूं जप। नाल एक बचन सी के पर दारा ते निंदिया। गुरमुखो कदी असली नुकते वल आके देखिए, अपनी जिंदगी विच झाती मार के कदी तेरे जीवन विच ओ दिन ता नहीं आ गया कि जिस दिन तू एका नारी जती होए दी गल कहंदिया किसे पराए तन नूं बुरी नजर नाल तकन लग पवे। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे ने मना केड़ी भैड़ी कमत तू ले ले, पर दारा ते नाल शब्द कह निंदिया। निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी, परमात्मा दी भगती नहीं कीती। भाई गुरदास जी दा सिर्फ एक कबित कह के मैं संपन्नता करनी चाहना, इस संसार नू जिस तरीके नाल तकोगे ओ कुछ ही सानू नजर आएगा। भाई साहब का एक कबित है कहिंदे ने मोर उहदे खंभ बड़े चंगे ने, उहदियां अखां बड़ियां चंगियां ने, उहदे बोल बड़े चंगे ने, जदों किते उह पैलां पांदा ते शायर लोक लुक के उस मोर दियां पैलां नूं देखदे ने, उहदे उत्ते उह अपने ख्याल भी लिखण लग पैंदे। हर एक मोर है बस, वेखण वाले दो आ गए। एक ने खत च कलम पकड़ी, उन्हें तकिया उन्हूं मोर दियां अखां, मोर दे खंभ, मोर दे बोल, मोर दा नृत्य ही दिसिया, ते दूजा आया उन्हें कहा छड परा अखां नूं खंभ नूं इहदे बोलां नूं ना देख, इहदे पैरां वल झाती मार के देख, इहदे वर्गे गंदे पैर ही किसे दे ने। मोर इको ही है, एक नूं खंभ नेत्र ते बोल नजर आउंदा पिया, एक नूं केवल उहदे गंदे पैर नजर आउंदे पए। भाई साहब ने कहा कि तू खंभां वल झाती मार, तू पैरां नूं वेख के क्यों निंदिया कर लग पिया है। दूसरा बचन कहन लगे चिक्कड़ विच कमल दा फुल पैदा होया, उस नूं परमात्मा ने सुगंधी दित्ती, महक दित्ती, कोमलता दित्ती, वेखण वालियां ने कमल दे फुल दी तशबीह कई थावां ते उस दी तशबीह दित्ती। हथां दी गल चली ते कहन लगे खस्त कमल, कमल दी तुलना हथां नाल कर दित्ती। पैरां दी गल चली ते कहन लगे चरण कमल, कमल दी तुलना चरणां नाल कर दित्ती। जे किते अखां दी गल चली ते शब्द वरत दित्ते कमल नैण, हस्त कमल, चरण कमल, कमल नैण, ते जे खिरदे दी गल चली ते उते भी शब्द वरत दित्ता कि खिरदा कौल, पर जिन्नू दिसदा सी उहने केवल उहदे खेड़े नूं देख के उहदी सिफत कीती, ते दूजा आया कहन लगा छड परा काहदियां सिफतां करना, देख पैदा किथे होया, चिक्कड़ विच पैदा होया। कहन लगा मैं भोली गया, मैनू तां सिर्फ खेड़ा दिसदा सी, तू आ दस्सिया इहदा चिक्कड़ भी है। हुण एक नूं चिक्कड़ दिसदा, दूजे नूं फुल पिया दिसदा है।
चिकड़ वाला अपनी थां खलोता है ते खेड़ा वाला अपनी थां ते खलोता है। भाई साहब ने एक बचन खोर किया, क्योंकि मन रे कौन को मत है लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत न कीनी रहाओ। शब्द का केंद्रीय भाव ए डेढ़ तुक है ते उनाठ दे उनाठ शब्द गुरु तेग बहादुर जी दे हर एक पहलियां डेढ़ तुकां दो तुकां ही रहाओ दियां तुकां। देखो कैसी तरतीब, हर पहली तुक ही नौट शब्दां विच रहाओ दी तुक है जो शब्द दा तत् भाव है। हजूर ने कहा, कहन लगे चंदन दा वृक्ष है, किसे ने कहा चंदन विच महक बड़ी है, ते रब दी बंदगी करन वालियां नूं चंदन नाल तुलना दे दित्ती। गुरु तेग बहादुर कहिंदे ने निंदिया मत कर, पराए तन ते पराए धन तो पराई निंदिया तो बच, तेरे अंदर परमात्मा वरतेगा। बाणी ने तां इत्थों तक कह दिता कि जिस बंदे ने दो गल्लां ते पहरा दे दिता है, पर धन पर दारा पर हरी तां कह निकट बसै नर हरी। हुण चंदन दे रुख नूं हजूर ने संत नाल भी तुलना दित्ती। कबीर चंदन का बिरवा पड़ा बेड्यो ढाक पलास, ओए पी चंदन कोई रहे बसे जो चंदन पास। ए भी क्या कहन लगे कबीर संत ना छाड़े संत ई, जो कोटक मिले असंत मैला गर पुयंगम बेड्या ता शीतलता ना तजंत। चंदन दा रुख ठंडा है, ओदी तसीर ठंडी है, ते इन्नी ठंड के अपने नेड़े जड़े रुख ने हवा चलदी अपनी सुगंधी ओना विच भी संचार कर दिंदा है। गुणा वाले नू ठंड सुगंधी ते सुगंधी दा संचार नजर आया, औगुणा वाले नू केवल सप ही लिपटे हुए नजर आए। हुण एक चंदन है नजरिया अपना, उस तो बाद भाई साहब ने तीसरा चौथा प्रमाण दिता। कह लगे अंब दे रुख नू ओदे फल नू आपां अमृत फल कहने, कईयां बीमारियां दा इलाज करदा ओ फल। कहिंदे ने ओदे रस नूं चूस ओदे रस नूं माण, गुरमत गुरु दी मत कहरी है कि उस अंब दी गुठली नूं ना खोल, क्योंकि अत दी कौड़ी है, तेरा संबंध केवल रस तक होना चाहिदा है, भलिया तू गुठली वाले पासे झाती क्यों मार लग पैना। सतगुरु ने बाणी विच ते भाई गुरदास ने दी व्याख्या की, कहन लगे जैसे नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर, ताके पग और देख दोख ना बिचारिए। कहन लगे इस तरह तू किसे दे दोख मत देख। हजूर ने कहा जैसे अमृत फल मिष्ट गुनाद स्वाद, बीज करवाई कै बुराई ना समारिए, तैसे गुर ज्ञान दान सबू ते मांग लीजै। निंदिया सकल पुत वंदना सकल पूत, निंदा ना तकारी है। हजूर कह रहे ने जे परमात्मा नू भज नहीं, पहली गल दो गल्लां ते काबू पा, एक पराया रूप ते दूसरी पराई निंदिया। ते जे सेवा भी कीती, शब्द दा जाप भी कीता, झाड़ू भी ला दिता, लच्छेदार शब्दावली विच मैं भाषण भी कर दिता, पर जे मैं लोकां दी निंदिया की नहीं छड़ी। ते गुरु साहिब ने बाणी च निर्णा दिता, कह लगे ओ पड़ाकुआ तैं नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भगत ना उपजी भूखे दान ना दीना। काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुख ते नी छूटी नेफल पही सब सेवा। हजूर कह रहे ने कि अपनी जिंदगी विच पराई निंदिया पर तन नू एदे तो गुरेज कर, ते जे परमात्मा नू भजना चाहना है ते फिर इस तरह भज के गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकार तकीन अज तक जे व्यर्थ चला गया। हुण अगला एक काम कर लै के कौ नानक हर भज मना जे बिद जल को मी। फिर दूसरा काम एक होर कर के स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजतनी नित नानक ए बिद खर भजो एक मन होए एक चित। जे एक मन एक चित मच्छी दी तरह कुकर दी तरह जपेगा ते फिर की होवेगा, राम नाम उर मैं गयो जा कै सम नहीं कोए, जे सिमरत संकट मिटे दर्श द्वार होए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कोटान कोट शुकर समुचे वीरां दा के जिन्ना ने वक्त बनाया है
ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਿਹਾਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ
0: ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੇ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੇ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਜਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਨ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਡਾਕਟਰ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਅਜ ਬ੍ਰਹਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅੰਤ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਨ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲ ਨਹਾਰ
0: ਉਖੇ ਕੋ ਦੇ ਬਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭਤੀ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਪਰ ਤੈਸਾ ਚਾਪਾ ਸਾਰ
1: ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਖੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮਤ ਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਜ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦਕੀਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਇ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਰੱਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जनमानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: भय ते निरपो होई बसाना
0: जिसते उपजा तिस माहे समाना
1: बस माही ले बस गडाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: प्रभु का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढाकै
0: अपने सेवक की सर पर रख
1: अपने दास को दे वडाई
0: अपने सेवक को नाम जपा
1: अपने सेवक की आप पत रखे
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: रब के सेवक को न पहुंचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रखे
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात
1: मारे न रखे अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: अमृते मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: उठ बैठ सोबत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाय
0: रब अपने सिव रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व दुख का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान पसगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न होवी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख बकार ते हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख वड भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचा सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो ए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाऊ
0: अनक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कछ भरम
1: सह सियान पलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगामी
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: जे वाहे को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत कने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस पर साधा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहुत दुख ते नासे
1: संत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निर्भव होए बसै
0: सगल व्याध मनते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: थित पाई चुके भ्रम गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने जगत प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवर उपाव स्वामीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उर तार,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर वत,
1: एहु तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माहि,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापत हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखद लाए,
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्ताव ते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: जाल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटम हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भगत बिना पव डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियानप सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संत करो व्यवहार,
0: हम सब दरगाह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाहे,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्राष्ट गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक ओट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साधक संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सोए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच पुन्नी सरदा सा पूरी,
0: प्रभ रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका साथिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जे सब किश दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काटै,
0: जनो जनम का टूटा गंड है,
1: गुर पूरै तत एह बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: लला को पावे संग,
1: एक बस दीजे करमया,
0: गुरु प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होए पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: ओ भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप, अपन किया नानका आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिष्टेता,
0: पापन तब कहते होता
1: जब धारी अपन सुन समात
0: बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चिन्ह जापत
0: जब हरक सो को कसै व्यापत
1: जब अपन आप आप आर ब्रह्म
0: मोह कहां किस होवत परम
1: आपन खेल आप वर्ती जा
0: नान करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: जब बंद मुगत को किस को गनी
1: जब एक ही हर अगम अपार
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई
0: जब शिव शक्त कहो हित ठाए
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै
0: जब कवन न डर कवन कत डरै
1: अपन चलित आप करना हार
0: नानक ठाकुर एक में पार
1: अवनासी सुख अपन आसन
0: तै जन्म मरण कहो कहां विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: जब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
0: तब कौन छटे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप ही अचरजा
0: नानक अपन रूप आप ही उपरजा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: जह बिन मैल कहो क्या तोता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन कमान कौन अपमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शल चित्र लगत को कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसे भूख कवन तृप्तावे
1: करन करावन करने हार
0: नानक करते का नहि समार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेदक देव कहां को चीन
1: जब अपन आप उतार है
0: शगन अपशगन कहां विचार है
1: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
0: नानक अपनी गत जन हो
1: जय छल अशेद अभेद समाया।

काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे और लिखत लिखे गुर पाया मन हरलिव मंडल मंडा हे कर साधु अं

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वेद बिस्माद जी बिस्माद भेद बिस्माद रूप बिस्माद रंग बिस्माद नंगे फ्रै जंत बिस्माद पौण बिस्माद पानी बिस्माद अग्नि खिड है बिडाणी बिस्माद धरते बिस्माद खाने बिस्माद सा लगे प्राणी बिस्माद संजोग बिस्माद विजोग बिस्माद।

सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन मन रसीए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुक्त जाने जियो धरत काया साध के विच दे कर

सचकाल कूड वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अव क्यो उगवै दाल जे कोहे ता उगवै रुत्ते रुत होए नान पाहे बारा पुरे रंग ना सोए पै विच खुंभ चढ़ाइए सरम पाह तन होए नानक भगते जेरा पै

दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामदि नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581 1900।

मैं अछूते विषय में आज विचार दे रहा हूँ, क्यों लगा हूँ। वो है चार युग। वैसे के भारत दी मनीषा करीबन करीबन मनुखता में हर समय चार हिस्सों दे वंडदी रही है। उन्हें जीवन दे ढंग भी चार वर्ग, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये चार वर्ण जीवन दे चार ढंग, फिर चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। हैरानगी है पुराणा मत सनातन मत दे मूल ग्रंथ भी चार ने, जो चार वेद कहलांदे ने, श्याम वेद युग रजत अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारों प्रगट और चार युगों की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग इन्होंने कई दृष्टिकोण के नाल नापना तोलना पड़ेगा। प्रथम समय दे चार युग, दूसरा स्थान दे चार युग, तीसरा मन दे मानसिक अवस्था दिया चार श्रेणियां जिन्होंने अभी चार युग कह सकते हैं। प्रथम समय दे ऐसा मनिया गया है कि लख डेढ़ लख साल बाद युग बदल जाते हैं और पौराणिक ग्रंथों के युगों की बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगा बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय पे खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनाया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और एक तिन्ने पहले मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय दे चार युग, इतिहास में वाचिए आज तो 5000 साल पहले श्री राम है गए और आज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है गए। अंदाजन 5500 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है जैसे, पर ये तिन्ने अवतार से 5000 साल की अवधि विच ही हो जाते हैं। इक इक युग की लखां साल की उम्र कपोल कल्पना के बिना और कुछ नहीं। क्यों? श्री राम नो त्रेते युग का अवतार मनते हैं, 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद हैं। श्री कृष्ण नो द्वापर युग का अवतार मनते हैं,
और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रकट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग दा अवतार मने जाते हैं। इस सारे दे सारे 5000 साल दे हो गए। ऐसा अंदाजा है इस युग की उम्र समय विच नापी है तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह आती है, किवें मन लिया जाए युग बदल गया। हजारां लखां साल पहले जो सूरज थी अज भी आई है, लखां साल पहले जो चंद्रमा थी अज भी आई है, और इसी तरीके नाल धरती भी हुई है, तारे भी हुई ने, सियारे भी हुई ने, सागर भी हुई है, और किसे हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारिया नदियां भी हुई ने। पुराने तो पुराने इतिहास में गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास में जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, सागर ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, युगां दी तब्दीली मनुख दी तब्दीली ते खड़ी है, ना कि सूरज दे बदलन ते, क्योंकि सूरज ते ओही है, चंद्रमा ते ओही है, सब कुछ ओही है। तो जब सब कुछ ओही है तो फिर से कोई इक्को युग होना चाहिए है। नहीं, युगां दी तब्दीली मनुख से खड़ी है, और युगां दी तब्दीली मनुख की सोच से खड़ी है, विचारधारा से खड़ी है। या इंज कह लो, युग एक विचार का नाम है, एक मानसिक अवस्था का नाम है। मनुख दे विचार दे बदल दया संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते हैं। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ दे तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे हैं, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे हैं, कर्मकांड बदलता रहा है, और इस सब कुछ की तब्दीली विचार की तब्दीली ते खड़ी है, और विचार की तब्दीली नो ही युग की तब्दीली मनते हैं। बहुगिणती दे जब मनुख दे विचार बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगा नो अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते हैं वो इस तरह है। आसा महला चौथा, सत युग सब संतोख शरीरा, सत युगे सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरुमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई, हर हर लेव हर नाम सखाई,
ਹਰ ਦਰਗੇ ਪਵੇ ਮਾਨ ਜਿਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜਿਓ। ਧਰਮ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਸਤ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਨ, ਸੰਤੋਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੌਤਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭੌਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਨੰਦਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਔਰ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਜਤ ਸਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਿਅਰਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਗ ਚੌਥਾ ਖਿਸਕਿਆ ਪ੍ਰੈ ਪਗ ਟਿਕਿਆ, ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਾਏ ਜਿਓ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ। ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂ ਬਿਸਲੋਧ,
निरपधावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, होमे अहंकार वधाया। राजे छोटे छोटे रजवाड़े जागरदार आपस में लड़न मरण लगते है। मोह ममता भी बढ़ गई, अहंकार भी बढ़ गया, क्रोध भी बढ़ गया। सतगुरुदेव जी महाराज अगां प्रमाण कर देने, हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमुख हर नाम लै जाय जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते युग रे हर मनुख शक्तिशाली होना चाहता, अहंकार दी जहर वध गई। जिसनों दूर करने वास्ते, इस जहर नो दूर करने वास्ते सिर्फ प्रभु दा नाम से, पर इस तो ओले होके लोकी संयम ते जत रख अपनी शक्ति वधा के दूजियां नू पछाड़ना चाहते ने और स्वयं शक्तिशाली होना चाहते ने। इस तरह दिया मनोबिरतियां त्रेते युग दे जी जी रहे हैं। दुआपुर अगर हुण जिस युग दे असी जी रहे हैं, जिसनों कल जो कहते हैं, इतों गिणती करिए ते दुआपुर दूजा पुर, त्रेता तीजा पुर और सतयुग चौथा बन जाता है। और ये गिनती ठीक है, त्रेते तो मुराद तीजा, द्वापुर तो मुराद दूजा युग। कल युग प्रथम मनी है तो सतयुग चौथा बन जाता है। सतयुग जो प्रथम मनी है तो कल युग चौथा बन जाता है। पर जो प्रचलित गाथा है वो सतयुग त्रेता द्वापुर से कलयुग इस तरह गिनती चल रही है। पर अखरी अर्थ करांगे त्रेते दे तो तीसरा युग द्वापुर दूजा युग कलयुग ये पहला युग जिस असी जी रहे, ये पहला जो लंघ गया, दूजा जो उस तो भी पहले लंघ गया तीजा, और जो उस तो भी पहले से चौथा। द्वापुर द्वापुर की रूपरेखा धन गुरु रामदास जी महाराज इस तरह पेश कर रहे हैं। जुग द्वापुर आया भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभे, अत क्रिया करम कमाए जियो। क्रिया करम कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महा जग जोध बोकीने, महा जग जोध बोकीने, विचों में पचे पचाए जियो। दीन दयाल गुर साद मिलाया, मिल सतगुर मल लै जाए जियो। जुग द्वापुर आया भरम भरम आया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग की रूपरेखा धन गुरु रामदास जी महाराज बयान करदे होया कहंदे ने, जगत भरम विच पै गया, बुलेखियां विच पै गया, गोपियां कान तरह तरह दियां रास लीला दे पसारियां विच पै गया। तप तापना आरंभ होई,
कर्मकांड आरंभ होए।

और हंकार मनुख दा वद्दा गया समय दे गेड़े नाल नाल अहंकार इतना चरम सीमा ते पहुंचया महाजग युद्ध बहु की ने बड़े युद्ध हो गए। वाकई द्वापुर देखते महाभारत दे युद्ध नाल सारा भारत ही तबाह हो गया। चोटी दे स्याणे मनुख चोटी दे दार्शनिक चोटी दे विज्ञानक चोटी दे धार्मिक पुरुष सब नष्ट हो गए। महाभारत दे युद्ध नाल भारत दी ते रीढ़ ही टूट गई और ऐसी रीढ़ टूटी काफी लंबे समय तक वाकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग दी व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान कर रहे हैं। बस युद्ध ही युद्ध सन हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैरी रह गए दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया जग रह गया। जग ते दान इन्हां दो पैरां दे धर्म टिक गया संतोख ते सत ये दो पैर उड़ गए। इस तरह धर्म दो पैरां ते टिकया समय दे गए नाल कलयुग आया और युगां दी व्याख्या समय दे मुताबिक इस वक्त की जा रही है। फिर अस्थान दे फिर मानसिक अवस्था दे जिमें जिमें गुरबाणी ने खोलिया मैं संगत के स्रोतियां दे सामने रख रहे हैं। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर सांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुरु पूरा पाया मन हृदय नाम लखाए जियो कल युग हर किया पग त्रै खिस किया पग चौथा टिके टिकाए जियो एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति हरि दा जस गायन करना इससे ही कल युग धर्म एक पैर दे टिक गया बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया। कल युग दी व्याख्या द्वापुर त्रेते ते सतयुग दी व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूपरेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान करते हैं और अपना फैसला इंज देते ने कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया कल युग दे कोई भी बीज मनुख बीजे जत दा सत दा कर्म दा और तरह तरह दे साधनावां दा लेकिन नाम ना जपे कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम ओते जपना ही नहीं और इस तरीके दे नाम

व्यर्थ दे कर्मा विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय की रूपरेखा जो युगों का चित्रण किया इस तरह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों अपने ढंग नाल बयान करते हैं और भगत रविदास जी महाराज से इतने तक कहें सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। ठीक तिने युग अपनी थां से महान होवनगे और मौजूदा एक कल युग इस देते उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा। कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते ने सतयुग त्रेता द्वापर भणीए कल युग उत्तम युगा माही। ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है? क्योंकि जगत देखते प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निषिद्ध है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे का युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने सतयुग त्रेता द्वापर भणीए कल युग उत्तम युगा माही। एक उत्तम युग है, एक श्रेष्ठ युग है, एक महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय स्थान के मानसिक अवस्था विच चार युगां दी जो व्याख्या है धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल फरमान करते हैं। प्रथम समय दे जो रूपरेखा है लंबे चौड़े शब्द विचों कुछ पंक्तियां मैं आप जी के सामने रखा जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उच्चारण कीतियां ने। सतयुग सत संतोख सरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सतयुग सात कहे सब कोई सच वरते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे मनुख नु आउंदा ही नहीं सी। उसका एक मूल कारण मनुख संतुष्ट से लोड़ां सीमित सन और लोड़ां दी पूर्ति प्राकृतिक रूप दे हो जांदी है। प्रकृति सब दी झोली दे लोड़ां दी पूर्ति पा देंदी सी, कर देंदी सी। जंगल दे फल फुल शिकार इत्यादि खुले रूप दे उपलब्ध से आबादी थोड़ी सी सैकड़े मेल तक वसों नहीं सी। झूठ बोलन लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी। त्रेते देख विश्वास दी थां ते दुबदा आ गई। लिहाजा धर्म दे एक कला नाश हो गई, विश्वास भरोसा सिदक ए नहीं रहा। मन दे दुबदा पैदा हो गई है कि नहीं दुबदा इसनों कहते ने। दो पासे दी धावना पैदा हो गई है कि नहीं है। दरअसल जिस वक्त मन दे जे ख्याल होंदा है तो मनुख ईश्वर दे नेड़े होंदा है, उसके मन विच रस होंदा है, टिकाव होंदा है, खेड़ा होंदा है, खुशी होंदी है। और जब दूसरा भाव दुबदा दूसरी धावना पैदा हो जाती है शक शायद नहीं है उदों ये दूर हो जाता है और दूरियां ते दुख नु जन्म देंदियां।
ਦੂਰੀਆਂ ਬੇਰਸੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪੁਰੇ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੇ ਕੋਈ। ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਮਾਨੋ ਅੱਧੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਠੋਰਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਜਦ ਭਰਾ ਕੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੁਆਪੁਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਖੀ ਨਹੀਂ ਭਾਓ, ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ। ਬਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਮੇਰ ਮੇਰੂ ਜੈਸਾ ਏ ਸਰੀਰ। ਮੇਰੂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਰੂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੜੀ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਕੱਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਿਅਰ ਤਪਤ ਰਹੇ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਂ ਕੈਸੇ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ।
ओही गंगा है, ओही सागर है, ओही धरती है, और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख होंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज प्रमाण करदे ने, पंच तत् कर तुद सब सिष्ठ साजी, कोई छेवा करेओ जे किछ कीता होवे, तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले ठाव कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनु कलयुग क्यों कहंदे ने? विचार बदल गया, जीवन शैली बदल गई, आग गुणा कल आइए। महाराज कहंदे ने, मैं कहन लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए, जे को सत करे सो छीजे, तप घर तप ना होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण एही, एही कलयुग दे लक्षण ने। कि कोई उच्चा इखलाक धारण करन दा प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ, इसनु सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाव ले बदनावी, कल के लखन एही, जो नाम जपेगा बंदगी करेगा उनु मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आखे जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ए कल जुग दे लक्षण नहीं। महाराज कहते, जिस सिकदारी किसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कल जुग दी होर रूपरेखा बयान करदे होया महाराज कहते ने, किसे पख दा भी जो चौधरी है खुआर होवेगा, कोई भी जिम्मेवारी चुके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जरीलो खुआर होवेगा, और उसनु अक्सर चाकरा तो डर के रहना पड़ेगा, प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जां सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना, जे किधरे चौधरी बंधना दे पै जाए, तो अक्सर मुलाजम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी, सेवक दे हथों मालिक दी मौत होवेगी। ये तो सब कुछ असी देखते पे हाँ, घर दे नौकर ही घर दे मालिक नू मार जांदे ने, घर दे नौकर ही घर नू लुट लैंदे ने, और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन बतीत करदे ने, परजा तो डरे हुए ने हुक्मरान, तो जो परे जा तो डरे होया हुक्मरान है, वो तो फिर परजा दे मुताबिक ही चलेगा। अगर परजा भ्रष्ट है राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान कर देने, और कहन तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा। उच्चा आचरण धारने जिसने प्रण कीता है, अपने प्रण नो निभा नहीं सकेगा। जे को सत करे सो चीजे, तप घर तप ना होई, जे को नाव ले बदनामी, कल के लखण एही, ए कल जुग दे लक्षण ने। इते होई बैरूनी रूप दे कल जुग दी द्वापुर त्रेते ते सतयुग दी व्याख्या। इसनु जो अध्यात्मक रंगत
गुरु नानक देव जी महाराज ने दिती है और उसकी जो व्याख्या भाई गुरुदास ने की है उस पहलू नु छुए बिना ये सारी विचारधारा अधूरी रह जाएगी। उंज भी युगां दी ए वन भारत दे ऋषि मुनिया ने ही की और ए एक प्रबल सच्चाई है कि धर्म दा बहुत गहरा बोध मनुख दे मानसिक मंडल दा बहुत गहरा अध्ययन जो इस देश दे च होया है और किधरे भी नहीं होया। इस वास्ते बड़े गहरे ऋषि इस देश ने पैदा किते, धर्म दा बहुत वड्डा साहित्य इस देश ने पैदा किता, कितने अवतार कितने संत कितने महात्मा कितने भगत इस देश ने पैदा किते भरे होया है। ये देश भक्तां नाल संतां नाल अवतारां नाल गुरुआं नाल इसनु ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश दी ऐसी सी, माहौल इस देश दा ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश दी महिमा अज भी उना अवतारा करके है, अज भी उना भगतां करके है। चार युगां दे अवतारा दी रूपरेखा भट्टां दी बाणी विच इंज दर्ज है। भट्ट कहिंदे ने सत जुग तै माणियो छल्यो बल बावन भायो त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आद पुरख पुरमायो। सतयुग दे 52 बोने अवतार त्रेते दे श्री कृष्ण रंसी द्वापर दे श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग देच धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश देच उजागर होए। समय दी रूपरेखा देच भट्ट अवतारा नूं इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय दा बैरूनी प्रभाव जन्म साखी देच इंज चित्रिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने बाले नूं मर्दाने नो समझांदे ने ए युग कैसा है। जे बैठा ता आखिए बैठा 70 घट जे चलना ता आखिए छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहिंदे ने ए ते सिर देते छार पा के चला गया मिट्टी पा के चला गया ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहिंदे ने ए ते बस 70 बैठ के ही बैठा होया 70 मल के ही बैठा होया ए ते सिर्फ बैठा ही रहिंदा है। जे बैठा तै आखिए बैठा 70 घट जे चलना ता आखिए छार गया सिर घट जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखी है ऐस घटना ही मत। जी मैं बोलदा ही नहीं खामोशी धारण कर लेना तो कहिंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है इहदे कोल अकल ही नहीं है।
पर जे मैं मौका महल गल करा बातचीत करा तो कई दिन तो बड़बड़ करता पै बस बोली जाता है बोली जाता है। जे बोला ता आखी है बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखी है इस घटना ही मत काई गाल ना मेवने करता ही रखे पत। बस दुनिया दा कम हो गया है निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लबने चल रहा है मनुख ले खाक उड़ा के चल रहा है बैठा है मनुख बस बैठा ही रहिंदा है बोले बड़बड़ करदा पे चुप है मूरख है गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहे है और निंदा करन दे बहाने लगता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इसका कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की त्यन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवे। हे प्रभु मनुख ऐसा निंदक हो गया और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं निम इतनी कौड़ी नहीं जहर इतनी कौड़ी नहीं जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने दौलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का भाव गति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया ते नारद दा कम की है चुगली इधर दी उधर उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी बन गई है महाराज कहने मनुख दा मन नारद है। नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा मन ते नारदी होया पे मन ते चुगल बखील होया पे मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे। ए कलयुग दा प्रताप समय दा प्रताप ए धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करदे ने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रस्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठियां दी भीड़ इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडियां दी भीड़ इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्म कांडी हो जाता है। और एते एक मन दा स्वभाव है कि एदे अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहिंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने ते गलत किस तरह हो सकते ने। दरअसल बहु गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आंदे और चंगे मनुखां दी
कोई भीड़ नहीं आती। बहुगिणती ते हमेशा ही गलत होगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी होंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही तो। गीटियां ते पत्थर आम मिल सकते ने पहाड़ा ते, हीरे ते किधर किधर, संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लग पैंदियां ने, पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकते ने। किकर ते सारी धरती दे च मिलदा है, पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे किधरे, जितने मिकदार दे कोयला निकलदा है पहाड़ा दी कुख दे चा, उतना सोना नहीं तो कल युग एक कलेश भरिया युग। और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेशमयी हो गया। झूठियां दी भीड़ दे झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ दे लोभी हो गया है। इस तरह दी भीड़ दे मनुख जी रहे है, नारद नाचे कल का भाव, जती सती कह रखे पाओ, नारद दी तरह मन नच रहे है, चुगल खोर हो गया। इत्थे जती अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इत्थे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय की रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख की तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग दी व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान कीती है, इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी, जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे तो इसनु समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलता रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है, और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा, जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई, और प्रार्थना दे शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जांदे ने। पर वासना ते चलदी है, अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकदा। इति वासना बद्धा आवे जाए, भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे च ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहे। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होवन, पुन ना होवन तो मनुख पछड़ जांदा है, पिछे मुड़ जांदा है। पर ऐसा ते कोई पापी नहीं कोई थोड़े बहुत पुन ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने, पाप पुन दोए बहल बिसाए, पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीदता है, कुछ पुन खरीदता है। तो पाप पुन बराबर होण करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आउंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके, पुन करदा है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते हैं।

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस

प्रचार दे तीन माध्यम मने गए ने, कीर्तन, कथा और ढाडी प्रसंग। कीर्तन बंदगी है, कथा गुरबाणी दी विचार है और ढाडी प्रसंग इतिहास दी रूपरेखा दा चित्रण है। मेरा सुभाव कुदरत ने और गुरु दी बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार दा बने है कि ए विचार समूह घरां विच और दूर दूर तक लोकां नूं सुनाई देन तां उन्हां दी प्रेरणा नाल मैं ए कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने जो पंज हैं जिन्हां विच वक्ख वक्ख गुरबाणी दे मजमून ने अलग अलग विषय ने और इन्हां पंज कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जिहड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशीलं।

0: ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ
1: ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ
2: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370